0: चाहनुहुन्छ?
1: यतिखेर अहिले मध्यपाहाडतिर आलु लगाउने समय सकियो, अब अब तराई तपाईँको मध्यतिर आलु लगाउने सिजन भएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हाम्रो विभिन्न पुस्तिकाहरू सकल आलुका विभिन्न जातहरूका प्रजन खेती प्रजन प्रविधिहरू हामीले निकालेका छौँ। यसरी हाम्रो हामीसँग सम्पर्कमा आएर अथवा हामी जस्तै अनुसन्धान गर्नेहरूबाट अथवा जिल्ला कृषि कार्यालयबाट अनि अन्य टेक्निकल साथीभाइहरूबाट हामीले सरसल्लाह लिएर उचित मात्रामा मलखाद पुर्याउन सकेर सिँचाइ व्यवस्था पनि मलखाद व्यवस्था पनि र राम्रो स्तरको राम्रो क्वालिटी स्तरको आलु रोग नभएको सफा आलु लगाएर चाहिँ उत्पादन हजुरले बढाउन सकिन्छ। केही समस्या भयो भने हामीले हजुरले फोन राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको वेबसाइटमा हाम्रो फोन नम्बर छ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला।
0: बस निकै व्यस्त समयका बावजुद पनि रेडियो टाइगरले संसारमा ल्याएको रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषिमा समय दिनुभयो। महत्वपूर्ण समय आलुलाई कोल्ड स्टोरबाट झिक्ने बेलादेखि रोपाईसम्मका विविध विषयमा जानकारी दिनुभयो। आलु विज्ञ रिता शर्माज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
2: कृषि सम्बन्धी जानकारी, सफल कृषकका कुरा, के हुन् त समस्या, के हुन् त विकल्प, कृषि प्रधान मुलुकमा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी, कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि हरेक महिनाको 1 र 15 गते, समय साँझ 7 बजे र बिहान पुनः प्रसारण 7 बजे रेडियो टाइगर FM सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि
3: गर्जन छ सधैँ बाघ झैं, रेडियो टाइगर 99.2 MHz।
4: अपना उक्राबर रेडियो टाइगर 99.2 MHz बर्दिया से रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन्टी बाटी है। यी कार्यक्रम रेडियो टाइगर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र संघले मिलकर तयार पर्लक हो।
5: अब हाम्रो एकछि कृषि सम्बन्धी छोटकरी मन गतिविधि सुनि।
6: देशभर मनसून के प्रभाव कायम उहिलक होसे धान बाली में विभिन्न किसिम के कीड़ा ओ रोग के प्रकोप बढ़ सिक्ना गति किसान हुकन सतर्क रह कृषि मौसम सलाह बुलेटिन आग्रह करलबाट। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्र नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के सहकार्यमा जारी गरिएको कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन अनुसार आगामी साता समेत मनसून के प्रभाव रहन सम्भावना बा। बुलेटिनमा धानमा विभिन्न किसिमके किरा ओ पट्टेमा डडुवा लगायतकी समस्या देख्न सम्भावना उल्लेख गरिएको बा। मनसूनके कारण खेतोमा पानी जम्ना ओ चिस्यान ढेर हुने अवस्थामा रोगके जोखिम थप बढ्न सक्ने जनाइएको बा। किसान हुकन खेतके नियमित अनुगमन गर्न रोग ओ किरा डगिलसे समयमा व्यवस्थापन गर्नका जैविक तथा एकीकृत किट व्यवस्थापन विधि अपनाए सुझाव दिएको बा। आवश्यक पर्लसे प्राविधिक के सल्लाह अनुसार कल विषादी प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरिएको बा। बाली नालीमा विषादी प्रयोग गरेबेर व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री प्रयोग गर्न ओ वर्षाकै समयमा विषादी निछिट्न किसान हुकन सचेत गराइएको बा।
5: मौसम सम्बन्धी जानकारीका लागि निशुल्क 11:55 हो। कृषि तथा पशुपक्षी जिज्ञासाका लागि 11:35 सम्पर्क कर्कन अपनाउक र बुलेटिनको बारेमा जानकारी लिन सक्ने बाटो।
4: कृषि ओ पशुपालन सम्बन्धी जिज्ञासा केलक नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदकै पैसा नलग्न नम्बर 11:35 हरेक सोमबार सन्ध्याकै 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म फोन गर्न सिक्दै।
5: अब हाम्रो सुन्टीबाटी कृषि विशेष रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि कार्यक्रमका पुछारमा आशिकली आप पाला मिल्बा हमार प्रश्न अपनक जवाब।
6: आजिक प्रश्न बा आलु खेती ढेर जसिन कुन महिनामा करजेट? 102 प्रश्न आलु खेती ढेर जसिन कुन महिनामा करजेट?
5: यी प्रश्नके उत्तर अपनाउँगर जनलबाती कलसे 98583961 आफ्न नाउँ ठेगाना सहित एक हप्ता भित्र एसएमएस मसिन उत्तर पठाएका सहभागी बन सिक्दी। सही उत्तर पठाइलक हुकनसे एक जहन गोला पठासे विजेता छानका कार्यक्रमके तरफसे एक छोटी सर पौधा देने बाजी।
6: आप पाला हेल्बा गैलक कार्यक्रम हाम्रो पुछलक प्रश्न सही जवाब देना विषयमा हाम्रो पुछल प्रश्न सही जवाब हो काला नामक धान। यी प्रश्न उत्तर ढेर जसिन सङ्घरेन लेख पठाइल रहल। यी मध्ये मनसे एक जहन गोलापठामा से विजेता घोषणा गर्लबाटी उहाँ भित ठाकुर बाबा नगरपालिका टिन नेउलापुरको सीताराम थारू
5: पुरस्कार के लाग अपना एक अठवार भित्तर अपन परिचय खुल्ना कार्ड लेखन टाइगर एफएम का कार्यालय मना सम्पर्क गर सिक्ने बाटी।
4: रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि सुन सकल्पा छ। अपन मनमा लागल विचार और कृषि खेती के विषय में कोनो प्रश्न और जिज्ञासा हुई कले से अपने उग्र अपन फोन में से कह सीखने बाटी है और एसएमएस ईमेल में से फिर लेखे सीखने बाटी है। अपन जवाब में विचार और प्रश्न धरक लाग कृषि अनुसंधान परिषद के पैसा निलग्न फोन नंबर 1135 में डेलक निर्देशन के आधार में रेकर्ड कर सीखने बाटी है। पुस्तक रेडियो टाइगर के संपर्क नंबर 0084 40 31 88 और मोबाइल नंबर 98580 30961 में फोन कई रेकर्ड कराए और लिखाए फिर सीखने बाटी है। पुस्तक रेडियो टाइगर एफएम @gmail.com में फिर अपन जिज्ञासा पठाई सीखने बाटी है।
5: लिटर रेडियो कार्यक्रम हमार खेती हमार कृषि के और ऐना भाग में नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि मौसम सलाह बुलेटिन हो। कृषि विज्ञ से लिखल सलाह सुझाव ऐना हप्ता में अपनाई से एक जिना कृषि संबंधी ढेर जानकारी संग और मेरमेरिक गतिविधि फैले ऐना भाग मन ध्यान होने नई बा कार्यक्रम का ऐना भाग के न सुनती रवि कार्यक्रम सुन के सुझाव सलाह फेना लिख कर पठिने बाटिकना आशा करती राष्ट्रीय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्र रेडियो टाइगर संघ संघरिया आरटीओ मैटिकाराम फिना विदा बिटी राम राम नमस्कार।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज।
1: रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला अपराह्नको 4 बज्यो।
2: धेरै धेरै धन्यवाद छ है नानी।
3: होइन दिदी, मैले त्यस्तो राम्रो काम के गरेर धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ?
2: तिमीले मेरो छोराको बिहेमा बुहारीका लागि महेन्द्रलीला अछामी सुनसारी पसलमा सुन किन्न पठाएकी थियौ। हेर त, आज हाम्रो बुहारी कति राम्रो देखिएकी छ।
3: तपाईँ पनि राम्रो डिजाइनको सुनचाँदी पाइने सुनचाँदी पसलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने महेन्द्रलीला अछामी सुनचाँदी पसललाई सम्झनुहोस्।
2: हाम्रो यहाँ झाला, बाला, मंगलसूत्र, छटकी तिलहरी, तिलहरी हार, मिनी हार, औठी लगायत न्यू डेकोरेशनका साथमा सुन खरिद बिक्री समेत गरिने जानकारी गराउँदछौ।
3: प्रोप्राइटर महेन्द्र तिरुवा र लीला बिक।
2: महेन्द्र लीला अछामी सुनचाँदी पसल, ठाकुरबाबा नगरपालिका 1 भुरी गाउँ बर्दिया, त्रिभुवन सपिङ कम्प्लेक्स सब्जी मण्डीको भित्र 35 नम्बर सटरमा।
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98400463368।
4: अशोक साल त ढुक्क नारी
5: हाँ त पोर्सालिक बात सम्झोट आमिन्दर लक्टी रहट बरा पानी वर्ष बेर अस्तिम चाम कहाँ रह सिक्जाए त सोचो त लट्ठी ठिक कम घर दान दान पानी वर्ष टिकी मन छत पटाए लाग।
4: हाँ त धन्न ब्यालम लट्ठी ठिक कम से सुरक्षित ठाउँ सर रली नारी बट्टी।
5: हाँ हो बदा
6: बर्खक ब्यालम बहिह ध्यार जोखिम रहत उह मार बहिह से बचकला पहिले हाँ सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही। एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण का सूची बनाई। एक छोटे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी। वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलक ओर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।
7: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाज जारी संदेश।
8: आफ्ना लागि दौरा सुरुवाल, कोट, अफिसको ड्रेस, केटाकेटीका लागि स्कुल क्याम्पसको ड्रेस अनि बुढीका लागि ब्लाउजको कपडा, साडी अनि धोती किन्न जानुपर्ने,
9: त्यो सँगै सिरक, दसना अनि सिरानी पनि बनाउन छ। यी सबै सेवा सुविधा भएको पसल कुन छ खै बजारमा?
10: ल यतिको लागि पनि चिन्ता किन, भुरी गाउँ बजारमा रुक्मणी वस्त्रालय छँदै छ नि।
11: साथै हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी थान एवं रेडीमेड कपडामा सर्टिङ सुटिङ सुट पिस कुर्ता सुरुवाल जरिवाल सारी ब्लाउजको कपडा सँगै तन्ना सिरक दसना सिरानी पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर बिन्तीराम राज फन रुक्मणी वस्त्रालय भुरी गाउँ बजार बर्दिया देवीराम चौकदेखि त्रिभुवन स्कूल जाने बाटो। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98681-086-93।
1: सूचना समाचार अनि मनोरञ्जनको साथी रेडियो।

0: चौबजार बर्दिया विजय प्लाजा होटलको अगाडि।
1: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।

0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सधैँ बाजुन। रेडियो टाइगर स्टुडियो टाइम। यति बेला रात्रिको 8 बजेको छ। यस टाइमचेकका साथमा नवजीवन पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक प्राली भरिगाउँ बजार बर्दिया
1: असोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
2: हाँ त पोर्सालिक बाट सम्झोट आम्मिन्दो लक्ती र हटबरा पानी वर्ष बेर अस्ट्रिक चिन्चाम कहाँ र सेक्जाय त सोतो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी वर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
1: हाँ त धन्न ब्यालम्ब डिक्टिकुम से सुरक्षित ठाउँमा सरली नारी बत्ती
2: हाँ हो बदा
3: बर्खक ब्यालम्ब बहिह ढ्यार जोखिम रहत उह मार बहिह से बचकला पहिलह सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।

अब थोड़ा किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया ना, इसीलिए खास बात खुदा में है।